इसे में दूध इवुरी दम बेगा त्यावल उन्हारासी के हम्म आतान का हाइरुगी हिंशा थिया का तेरे सोत हिंशा अर्थावया शिया